फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 29वीं तिथि तदनुसार 20 सितंबर 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वरों में ये देश गाना।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए अब हम आपको हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा श्रीकांत पारगांवकर का। 6:40 पर आप सुनेंगे कुछ भूले बिसरे गीत। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:00।

बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कृषि संकेत कार्यक्रम। 7:20 पर रेडियो पत्रिका कार्यक्रम होगा गागर में सागर। संक्रमण निर्माण होगा अदिति जैन का, संयोजन और प्रस्तुति होगी शुभ्रता यादव की। 7:50 पर आप सुनेंगे गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता।

सुबह 8:15 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 8:25 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। 9:10 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 10:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 पर। इस घंटे की सुर्खियां इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 5:00। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा मैं सागर हूँ। 5:40 पर गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। 6:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत। 6:45 पर कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 8:15 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम डगर विकास की। 8:30 पर चित्रपट संगीत। रात 9:00 आप सुनेंगे मनचाहे गीत। रात 10:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एशियन गेम 2026 की हाइलाइट्स। तो ये थी हमारी आज की सभा की शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और साथी।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुला

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था श्रीकांत पारगांवकर और साथियों का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म अनारकली से। स्वर है हेमंत कुमार का, गीत है राजेंद्र कृष्ण का और संगीत है सी रामचंद्रन का।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर

0: भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: हाँ ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
7: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
8: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और लीजिए आप सुनिए बाबरी नैन फिल्म का एक गीत राजकुमारी की आवाज़ में। गीत है केदार शर्मा का और संगीत है रोशन का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मधुमति में। गीत है शैलेंद्र का और संगीत है सलिल चौधरी का।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: मन्त्री अश्विनी वैष्णवः सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नैच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं संभाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरंतरं अवधानं कर्तव्यं, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयम् 170,000 मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96,500 स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानाम् आध्यात्मिकसमूहानां शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीयसङ्घटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को अंजना खेर का नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं हम अपना ये कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे जिंदगी की। साथियों, जिंदगी में खुशी और गम धूप और छांव की तरह होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे कि कभी धूप होती है और कभी छांव। ना ही खुशी स्थाई है और ना ही गम स्थाई है। खुशी और गम हर इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और ये सिक्के के दो पहलू भी हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी जिंदगी दुखों और तनावों से भरी है या मुझसे ज्यादा दुनिया में दुखी और कोई नहीं, तो साथियों ऐसे व्यक्ति के लिए यही कहा जा सकता है कि दुखों से निराश होकर बैठ जाना कायरता है। दुनिया में जो दुख आप पर गुजरा उसे बार बार याद करने से आप दिन रात तनाव में तो रहेंगे ही, साथ ही आपका व्यवहार भी दूसरों के प्रति अच्छा नहीं रहेगा और इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। साथियों, यदि व्यक्ति अपनी जिंदगी से शिकवा करना छोड़ दूसरों के गमों की तरफ देखे तो अपने गमों को बहुत छोटा पाएगा। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, जो हकीकत है उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि कुछ छात्र फेल हो जाते हैं और उन्हें शर्मिंदगी और निराशा के कारण वे मौत को गले लगा

लेते हैं। यदि वे हिम्मत नहीं हारते और सच्चाई को स्वीकार कर मेहनत करते तो कुछ समय बाद उन्हें खुशियां मिल जाती और वे इस अमूल्य जीवन से हाथ धोने से बच जाते। और साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। साथियों, ना उम्मीदी और गम इंसान के व्यक्तित्व और सेहत दोनों को बिगाड़ती है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा आशावादी होकर जीना चाहिए। अपनी तकदीर को कभी ना कोसें, सदा खुश रहें और दूसरों के साथ खुश मिजाजी से पेश आए। जिंदगी संघर्ष में है, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लेना चाहिए और गम करना छोड़ संघर्षों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऊपर वाला भी, हाँ जी साथियों, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करना जानते हैं। हमेशा अपने आप को रुचिकर कामों में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे आपके गम की तासीर बहुत हल्की पड़ जाएगी और आप फिर पूरी स्फूर्ति के साथ जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। तनावयुक्त दिमाग और अच्छा स्वास्थ्य हमें कामयाब जिंदगी देता है, इसलिए तनाव और दुखों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होना देना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मगर हमें गलत राहों की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए और खुद से ये वादा करके जीना चाहिए। जी हाँ साथियों, खुद से हमें ये वादा करना चाहिए कि ये दिल तुझे कसम है, ये दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, रोने से कम ना होगी कभी तेरी मुश्किलें, बिगड़े हुए नसीब का हंसकर संवारना। इसी के साथ सुबह सुबह कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है दुग्ध में फैट बढ़ाने के उपाय और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बीके शर्मा।
1: जो लोग समितियों में दूध दे रहे हैं, दुग्ध समितियों में, दुग्ध समितियों में जो दूध का उनका खरीदने का तरीका है वो फैट के ऊपर निर्भर रहता है। फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा उसका दूध की कीमत ज्यादा मिलती है, और जिसमें फैट परसेंटेज कम होता है उसमें दूध की कीमत घट जाती है। तो हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बिना किसी लागत के, बिना दाने में परिवर्तन किए, बिना अतिरिक्त दवा दिए, कैसे हम फैट परसेंटेज को बढ़ाएं और अधिक कीमत से अब हमारा दूध बिके। तो इसके लिए हम आपको 2-3 उपाय बताएंगे कि सामान्य तौर पे पशुपालक क्या करता है कि जब वो गाय लगाने के लिए बैठता है तो बछड़ा छोड़ता है, और शुरू में पाना छोड़ने के लिए बछड़े को छोड़ा और उसके बाद उसने दूध लगाया। दूध लगाने के बाद फिर थोड़ा बहुत दूध बछड़े के लिए बाद में छोड़ देता है, बाकी का दूध लगा लेता है। हम पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि जो फैट है, फैट पानी से हल्का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फैट पानी के ऊपर रहेगा। जब गाय के थन के अंदर, अडर के अंदर दूध भरा होता है तो फैट सबसे ऊपर होता है। जब आप गाय को लगाना शुरू करते हो, जैसे किसी की 4 लीटर की गाय है और या भैंस है, तो उसने 3 लीटर दूध जब लगाया पाड़ा पाड़ी छोड़ने के बाद, और उसके बाद आधा लीटर जो आखिरी का पाड़ा पाड़ी को छोड़ा, उसी में तो फैट ज्यादा था जो आपने छोड़ दिया। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि जब भी व्यक्ति जो लगाने वाला है वो गाय या भैंस लगाने बैठता है बाल्टी में, तो आखिरी में आप देखते हो लास्ट में लगाते लगाते जो फैन बनता है वो आखिरी में बनता है, और फैन बनता है फैट के कारण। तो ये भी निश्चित हो गया है कि फैट आ

0: आखिरी में ही निकलता है, और आखिरी में जो फैट निकलता है वो आप अपने पाड़ा पाड़ी को छोड़ देते हो। तो आधा लीटर यदि आपने या एक लीटर अपनी पाड़ा पाड़ी को छोड़ा जिसमें फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा था, आपको दो उपाय करने हैं। या तो आप पाड़ा पाड़ी को जो पहले छोड़ते हैं पाना छोड़ने के लिए गाय लगाने के पहले, तो अगर आप दो मिनट को छोड़ रहे हैं तो तीन चार मिनट को छोड़ दो, जितना पिलाना है पहले ही पिला लें, बाद में पूरा दूध लगा लें, तब आप देखेंगे कि आपके दूध में फैट परसेंटेज ज्यादा आया। दूसरा उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि यदि आपको लिमिट नहीं मालूम है कि आज गाय या भैंस कितना दूध देगी, तो हम छोड़ने की में थोड़ी सी असमर्थता हो जाती है कि कहाँ छोड़ना है कितना छोड़ना है, इसके लिए मैं दूसरा उपाय ये बताता हूँ कि आपने बछड़ा छोड़ा या पाड़ा पाड़ी को छोड़ा, भैंस आपने पाना छोड़ दिया, आप लगाने बैठ गए, आप ड्रॉप ड्रॉप करके पूरी भैंस लगा लीजिए, बिल्कुल ना छोड़ें भैंस में दूध। उसके बाद आपको यदि पाड़ा पाड़ी को दूध पिलाना है तो जो आपने लगाया है बाल्टी में उसमें से आधा लीटर अलग से पिला दें। क्या होगा, आप देखेंगे कि लास्ट में जो फैट वाला दूध था वो आप पाड़ा पाड़ी को दे रहे थे, आपके दूध में फैट आ ही नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से यदि आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे, उसी दिन देख सकते हैं आप, तो जिनके पास लैक्टोमीटर है फैट जांचने की मशीन है, आप अगर 4 लीटर वाली भैंस को लगाते हैं, शुरू का 3 लीटर लगा के उसमें फैट देख लीजिए, आखिरी का 1 लीटर लगा के उसमें फैट देख लीजिए, तो उसमें जब फैट बढ़ जाएगा तो जो दुग्ध समितियों को जो फैट के बेस पे दूध खरीद रहे हैं निश्चित रूप से उचित पैसा मिलेगा। दूसरा एक और चीज होती है कि यदि आप बछड़े को या पाड़ा पाड़ी को लगाने के बाद नहीं छोड़ेंगे तो एक लाभ और मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब पाड़ा पाड़ी बाद में जब आप दूध कम छोड़ते हो तो बार बार थनों में सिर मार मार के उसमें इंजरी पैदा करता है, मैस्टाइटिस रोग की संभावना ज्यादा हो जाती है, दांतों से उनके थनों में जख्म भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश करता है कि मिल जाए और आपने छोड़ा नहीं है तो वो प्रयास करता रहता है, इससे अडर को नुकसान होता है। एक तो ये फायदा मिलेगा, दूसरा ये फायदा मिलेगा कि आपके दूध में फैट की सही मात्रा मिल जाएगी। दूसरा,
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत, विषय था दुग्ध में फैट बढ़ाने के उपाय, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर बी के शर्मा। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया। इसके माध्यम से केंद्र व राज्यों के 17 से अधिक अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाप्त कर एक पारदर्शी और एकीकृत व्यवस्था बनाई गई, जिससे कर पर कर की समस्या खत्म हुई और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं

0: सस्ती हुई। डिजिटल जीएसटी नेटवर्क से कर चोरी पर लगाम लगी और राजस्व संग्रह में भारी बढ़ोतरी हुई। जीएसटी परिषद के जरिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर देश को एक एकीकृत आर्थिक बाजार में बदल दिया है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनकल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के जिला आयुर्वेद कार्यालय सहित 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में भी इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ग्राम मिंडल की आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। वहीं वड़नगर से वाराणसी तक निकलने वाली सेवा संकल्प यात्रा एवं जल सेवा संकल्प यात्रा का झाबुआ जिले में प्रवेश हुआ। सतना में आयोजित सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिव्यांगजनों को 590 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया। वहीं ग्वालियर के स्कूलों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बच्चों के साथ ग्वालियर में फिल्म भी देखी। इसके अलावा मुरैना के कैलारस महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 15 से 29 साल के युवाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को झूठ की गूंज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात की है। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2002 से 2003 तक स्कूलों में 16% ड्रॉपआउट था, जो अब जीरो है। लगभग 1,00,000 के आसपास पदों की भर्ती हमारी माध्यमिक भर्ती बोर्ड और PSC के माध्यम से हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB2 को गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर नीमच के जंगलों में विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, जिसमें 2 नर और 2 मादा शामिल हैं। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाई गई इस मादा चीता ने कूनो के माहौल में खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। कूनो के बाद अब उसे गांधी सागर स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां वह पहले से मौजूद चीते प्रभाष, पावक और धीरा के साथ रहेगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट चीता को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत सुशासन और पारदर्शिता को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव लगातार प्रदेश के दूरदराज के इलाकों का मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। अपने निरीक्षण दौरों के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सीमा से लगे डिंडौरी जिले के गड़ासरी पटरिया मार्ग का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और आधुनिक ग्लास फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर बार्स तकनीक के उपयोग का निरीक्षण कर इसके प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। इसके पूर्व प्रबंध संचालक ने रायसेन में निरीक्षण के दौरान जनविश्वास शिविरों के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही पौधरोपण और जल संरक्षण के तहत बनाए जा रहे रिचार्ज बोर व लोक कल्याण सरोवरों के कार्य की समीक्षा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। इस महाअभियान के तहत कुछ जिलों में प्रशासनिक स्तर पर सराहनीय कार्य देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की अगस्त 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदिशा जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42.95 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन और प्रशासनिक कसावट के चलते जिले में कृषि कल्याण योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन बेहद प्रभावी ढंग से हो रहा है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज महिला क्रिकेट सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वहीं

भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी, जबकि भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलाविरन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा के एक निजी विद्यालय में गणेशोत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परंपराओं और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा खंडवा में होमगार्ड सैनिकों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के 81.48% संतुष्टिपूर्ण समाधान के लिए ए ग्रेड मिला है। झाबुआ के रामा और खरडूबड़ी के दो विद्यालयों में शैक्षणिक अधोसंरचना एवं सुविधाओं के विकास के लिए 319.58 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में फोरलेन हाईवे पर ट्रक की टक्कर से ट्रॉली सवार एक महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पन्ना जिला जेल में कल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान 64 गाइडों ने जैव विविधता और वन्यजीव व्यवहार की बारीकियां सीखी। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी निर्माण एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सागर संभागायुक्त दिलीप कुमार ने छतरपुर के पाठापुर गांव का भ्रमण कर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर मुआवजा एवं पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को सुलझाया। शहडोल पुलिस ने फर्जी और संदिग्ध सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट 2.0 चलाकर छापेमारी की, जिसमें ब्योहारी में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धार के मगजपुरा स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 23 सितंबर को 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं काढ़ा वितरण शिविर लगाया जाएगा। और शासकीय आईटीआई मुरैना में आयोजित रोजगार कैंपस में 18 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। निर्माण और संकलन है आदिति जैन का और संयोजन और प्रस्तुति है शुभ्रता यादव की।
1: गागर में सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर।
1: सागर मंथन।
2: बीते सप्ताह शहर में आयोजित हुई गतिविधियों की जानकारी। बीते सप्ताह शहर में एक फाउंडेशन संस्था द्वारा हिंदी उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित 4 दिवसीय उत्सव में साहित्य और भाषा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इसी क्रम में युवा साहित्यकारों के लिए कविता लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं आयोजक संस्था के सदस्य चंदन कुमार।
3: नमस्ते, मेरा नाम चंदन कुमार है। हिंदी दिवस को लेकर 4 दिवसीय कविता लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया था हिंदी महोत्सव के अंतर्गत। सब का उद्देश्य ये था कि युवा साथी जो हमारे सागर में हैं, उनको कविताओं की बारीकियां सिखाए। इसके लिए कुछ गेस्ट भी थे हमारे साथ,

0: कविता कैसे लिखी जाती है, विषय क्या होता है, कविता की बारीकियां क्या होती है, छंद अलंकार कैसे कविता में प्रयोग होता है, और इन सारी चीजों पे उनका वर्कशॉप हुआ था। करीब 26 युवा साथी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम के अंतिम दिन में युवाओं ने कुछ अपनी कविता के भी बताई जो उन्हें 4 दिनों में सीखा। फिर दिन हिंदी दिवस के दिन ही रखा था उसका समापन, जिसमें सर्टिफिकेट बांटे गए और उनकी कविता ली गई, और उसका हम लोग बुकलेट भी बनाने वाले हैं, कविताओं का संकलन। हम इसका फॉलोअप भी करेंगे। अभी आगे आने वाले महीनों में हम सोच रहे हैं कि कुछ और युवा साथी के साथ जोड़ के इसको और थोड़ा बढ़ाए और कविता की और बारीकियों को अच्छे से उनको सिखाए, ताकि वो अच्छे कविता लिखना सीख जाए, ऐसा अभी हमारा प्लान।
1: मेरा नाम अमीश साक्षी है। मेरी जो कविता है ये पर्यावरण पे है, शीर्षक है पर्यावरण की पुकार। तो इसकी कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। हरे भरे जंगल की छांव धरती का सिंगार है, नदियों की निर्मल धारा में जीवन का आधार है। पेड़ हमें सांस देते हैं, फल फूल और छाया देते हैं, बदले में हमसे कुछ ना मांगे फिर भी जीवन भर साथ देते हैं। लेकिन मानव की बढ़ती चाहत प्रकृति पर भारी पड़ती है, कहीं कटते जंगल सारे, कहीं नदी प्रदूषित होती है, धुआं उगलती गाड़ियां देखो आसमान भी रोता है, धरती माँ का हरा आंचल धीरे धीरे खोता है। प्लास्टिक की इन थैलियों ने नदियों को भी घेर लिया, कचरे ढेरों ने देखा सुंदर शहर को ढक लिया, पक्षी अपना घर ढूंढ रहे हैं, पशु जंगल से दूर हुए, इंसानों की छोटी छोटी गलती से कितने जीवन मजबूर हुए। अगर हम आज नहीं संभले तो कल बहुत पछताना होगा, सूखी नदियों तपती धरती का दर्द हमें भी सहना होगा, ऐसी गाड़ी बिजली के साथ पेड़ भी हमें बचाने होंगे, अपने आने वाले बच्चों के लिए जंगल भी फिर से उगाने होंगे। धन्यवाद।
2: बीते सप्ताह नो अब्यूज डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से बचने और सम्मानजनक भाषा को बढ़ावा देने की अपील की गई। हमें अधिक जानकारी दे रही हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता।
3: मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता समाज सेवा के क्षेत्र में 32 वर्ष से कार्य कर रही हूँ, चिकित्सक हूँ। जन जागृति संकल्प दिवस माँ बहन बेटी की गालियों के विरुद्ध नो अब्यूज डे वैचारिक स्वच्छता अभियान के रूप में इस मुहिम को चला रखा है। अनेक लोगों को जब जन जागृति इस विषय में की कि ये गलत शब्द हैं और ये बलात्कार की धमकी भरे शब्द हैं, हम जब ऐसे नहीं है तो हमको समाज में दिखना भी नहीं चाहिए ऐसा, तो लोगों को लगा कि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और संकल्प लिया, तो हमें लगा कि ये जन जागृति का विषय है, इसलिए इसके लिए राष्ट्रव्यापी जन जागरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और अभी 31 जुलाई से 31 अगस्त के बीच 4 विभागों ने इस चीज को ऑर्डर जारी किया, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, डॉक्टर हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विभाग। तो संभाग भर में ये हमारे पूरा लागू हुआ कि हम 17 सितंबर नो अब्यूज डे के रूप में घोषित हुआ और उसको मनाने की प्रक्रिया सभी जगह प्रारंभ हुई। एक संदेश आकाशवाणी सागर के माध्यम से देना चाहूंगी, ये प्रतिदिन जन जागृति का विषय है, मगर एक दिन 17 सितंबर हमको फिर से झकझोरने का दिन होता है कि हम पुनः संकल्पित हो और एक साथ संकल्पित हो सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी कार्यालय, सभी संस्थानों में, कि हम इस दिन संकल्प लें कि हमारे अंदर की जो अगर बुरी आदत किसी में है तो वो अब नहीं उसको पुनरावृत्ति करेगा, और इस तरीके का ये संकल्प हो, और ये संकल्प जब भी हो हम सोशल मीडिया में शेयर करें, जिससे कि सोशल मीडिया के माध्यम से दूर तक जिससे ये राष्ट्रव्यापी संदेश हो और हम स्वयं संकल्पित होकर के इस बुराई को जीवन से दूर करें, समाज से दूर करें, समाज को अपराध से मुक्त करें और इस बलात्कारी मानसिकता से दूर करें। धन्यवाद।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में एक महीने का सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सेवा, जनभागीदारी और सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना और जोड़ना है। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, सामाजिक सेवा, जन कल्याण और अन्य कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सागर जिले में भी कई कार्यक्रम हुए, जिनमें आशीर्वाद का दिया और आओ मिलकर विकास के दीप जलाएं जैसे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शामिल रहे। सागर शहर की एक फाउंडेशन आयोजक संस्था की अध्यक्ष प्रीति सिंह हमें अधिक जानकारी दे रही है।
4: जी, मैं प्रीति सिंह राजपूत। आज हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सामुदायिक भवन पद्माकर नगर में दीप यज्ञ का आयोजन किया। आदरणीय

0: मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरी तरह से समाज सेवा और देश कल्याण में समर्पित कर दिए हैं। तो आज हम सभी महिलाओं ने आशीर्वाद का दिया जलाकर भगवान से उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की है। और जैसे कि आपको पता है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जन सेवा ही देश सेवा है। इसलिए आज हम महिलाओं ने यह संकल्प लिया कि हम अपने अपने स्तर पे समाज के जरूरतमंदों की मदद करेंगे। हम अपने मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, सरकारी योजनाओं को गरीब परिवारों तक पहुंचाने का जरिया बनेंगे और उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। सेवा केवल बातें करना ही नहीं बल्कि उसे अपने संस्कारों में ढालना है। तो आज ये जो आशीर्वाद का दिया जलाया है, यह सिर्फ दिया सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारा यही संकल्प है कि हम पूरी निष्ठा के साथ, सेवा संकल्प के साथ खड़े रहें और विकसित भारत 2047 के सपने को मिलकर साकार करें। धन्यवाद।
1: शिखर की ओर।
2: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके परिवार की समृद्धि में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इस योजना के विषय में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन सागर प्रभाष मुड़ौतिया।
3: सबसे पहले तो श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभाष मुड़ौतिया है। मैं जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला सागर मैं पदस्थ हूँ। श्रोतागण को मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिला स्व सहायता समूह के सदस्य कार्यरत है और अपनी गतिविधि कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत एक आजीविका मूल्य संवर्धन के हेतु लखपति दीदी का प्रोग्राम चल रहा है। लखपति दीदी का आशय है कि स्व सहायता समूह के सदस्यों की परिवार की समग्र आय, उनकी परिवार की पूरी सभी स्रोतों से आय मिला के कम से कम मिनिमम 1,00,000 रुपए से अधिक उनकी आय, वार्षिक आय होना जरूरी है। और इसके तहत ये कार्यक्रम विगत 2 साल पहले जिले में शुरू हुआ था। पूरे मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के का संकल्प था स्व सहायता समूह के सदस्यों को लखपति की श्रेणी में लाना है। इसके तहत हम लोगों ने 2 साल पहले 67,267 का लक्ष्य लेके जिले में काम किया। उसमें प्रथम दृष्टांत इनके लखपति बनाने के लिए स्व सहायता समूहों में से ही सदस्यों में से एक CRP चुनी, जिस आजीविका CRP वो एक प्रति 80 सदस्यों पर मिलकर वह CRP उनके पर वर्क करती थी। उस CRP का काम रहता था कि उनका पहले उस समय की तत्कालीन उनकी इनकम को देखना, फिर उस इनकम के बाद उस CRP को प्रशिक्षित किया गया। CRP ने फिर उनका बिजनेस प्लान बनाया। जैसे किसी सदस्य की इनकम 60,000 रुपए आई तो 60,000 से अब उसकी 1,00,000 वार्षिक कैसे की जाए, कैसे या तो उसको उन्नत किसी दिया जाए या फिर उसको पशुपालन से जोड़ा जाए, जो उनकी परंपरागत कार्य थे उसी कार्य में उनकी और कौशल को बढ़ा के उनकी आय में संवर्धन हो सके। इसी बीच में 2 साल में कार्यक्रम हुए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई, उनका बिजनेस प्लान बनाया गया, जिसको आवश्यकता थी उनको आवश्यकता अनुसार मिशन से ऋण उपलब्ध कराया गया। ऋण के लेने के बाद फिर उनका प्रति त्रैमासिक में उनकी आय का CRP जाके कैलकुलेशन करती है। उस आय में ऐसा कैलकुलेशन करती है कि आपके क्या क्या इनकम के स्रोत हैं और आपके क्या क्या एक्सपेंडिचर हैं। एप्लीकेशन पे यह होता है और ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन पे निकल आता है कि उसकी त्रैमास की इनकम कितनी आई। तो ऐसे करके हुए 2 साल में जो अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, 67,267 में से अभी 61,000 के समथिंग हमारे जिले में लखपति दीदी चिन्हांकन होके सामने आई हुई है। और अग्रिम 2029 तक का हम लोगों ने और लक्ष्य रखा है, जो कि लक्ष्य हमारा लगभग 1,02,000 के समथिंग पहुंच जाएगा। और अब अग्रिम 2 साल में हम इसमें इसी क्रम में काम कर रहे हैं। इसमें अच्छी चीजें निकल के आई, अच्छी सक्सेस स्टोरी निकल के आई कि बहुत सी महिलाओं की इनकम 5,00,000 रुपए या फिर सालाना 5,00,000-4,00,000 रुपए आजीविका मिशन से जुड़ के महिलाओं ने ये इनकम आय की है। तो काफी सक्सेस स्टोरी है और उन महिलाओं से जब मिलके बात करते हैं तो काफी हर्ष होता है कि हाँ, महिलाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी बीच में मैं आपके श्रोताओं से एक अपील करता हूँ, आप अपनी आजीविका संवर्धन के लिए अपने निकटतम विकास खंड में संपर्क करें, स्व सहायता समूह से जुड़े और हमारे इस लखपति प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी आजीविका का संवर्धन करने और लखपति दीदी के क्लब में शामिल हो। धन्यवाद।
1: सागर के मोती।
2: भारतीय शास्त्रीय संगीत में

0: सितार की अपनी एक खास पहचान और मधुरता है। इस वाद्य की तारों से निकलने वाली धुन श्रोताओं को संगीत की एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक सितार वादक हैं, जिन्होंने सितार वादन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और निरंतर अभ्यास और साधना के साथ इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शंकर शुक्ला से। आपने सितार वादन की बारीकियों, वाद्य यंत्र की विशेषताओं और अपने संगीत सफर के अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। सुनते हैं सिद्धार्थ शंकर शुक्ला को।
1: नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शंकर शुक्ला, सितार वादक, और मैं सागर में ही जन्मा, सागर में ही मैं पढ़ा और यहाँ मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने मैहर घराने के पंडित संजय गुहा जी से, जो रविशंकर जी के शिष्य हैं, उसमें सितार की तालीम ली है और निरंतर ही संगीत, कला, साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों में सक्रियता रखता हूँ और सोशली जुड़ा हुआ हूँ और मुख्यतः संगीतकार ही अपने आप को मानता हूँ कि यही मेरा परिचय है। देखिए, जो कल्चर वाली बात है, जो संस्कार वाली बात है कि सारे संस्कार देना तो पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम इसमें बहुत खुश किस्मत रहे कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत सारी विधाओं का एक्सपीरियंस कराया। उसमें से जो हमको इंटरेस्ट आया वो हमारी विधा थी सितार वादन की। तो बचपन से ही हमको स्कूल में बहुत सारे वाद्य सिखाए गए, घर में गायन सिखाया गया, वाद्य सिखाए गए, घुड़सवारी सिखाई गई। उसमें से अपने आप एक ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आया और इसको फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए फिर हमने इसको पकड़ लिया। कोई भी आर्ट फॉर्म हो वो स्टैटिक नहीं होता है, आर्ट फॉर्म समय काल अनुसार बदलता जाता है। तो जैसे भाषा की एटिमोलॉजी होती, शब्द की एटिमोलॉजी होती है, वैसे ही जो संगीत है या सांगीतिक जो वाद्य होते हैं उनमें समय समय पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता रहता है। तो उस प्रोसेस से ये इंस्ट्रूमेंट बनने की जो प्रोसेस है वो सतत चलती रहती है। तो जो हमारा सितार है जो आज हम बजा रहे हैं, उसका जो रूट्स है वो रूट्स हमें वीणा में मिलते हैं और जो वीणा है, वीणा जैसे बहुत सारे मिलते जुलते वाद्य जो आसपास के एरिया में ही मिलते हैं। जैसे जो सितार है ये माना जाता है कि ईरानियन शब्द सहतार से निकला है, तो शब्द जरूर वो सहतार से निकला है लेकिन वो वीणा से ज्यादा मिलता जुलता है सितार। बिकॉज जब सहतार इंडिया में यूज होने लगा तो लोगों ने उसको इंडियनाइज्ड कर दिया। जैसे अपना चाइनीज फूड जब इंडिया में बनता है तो जैसा चाइना में बनता है वैसा नहीं बनता है, इंडिया में चाइनीज फूड इंडियन चाइनीज के तौर पर बनता है। और इसी क्रम में जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक माइक वगैरह जोड़ दिए गए तो एक नया फॉर्म मिला, उसको लोगों ने इलेक्ट्रिक सितार बोला या कुछ लोगों ने उसको जितार भी शॉर्ट फॉर्म में बोलने लगा। तो इस तरीके से सितार जितार का फॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे जो सोसाइटी में एक्सपोजर्स मिला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, ग्लाइड है, हवाइन ग्लाइडिंग गिटार है, ड्रम्स हैं और परकुशंस के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कीबोर्ड्स है, पियानो है, तो इस सब का एक्सपोजर मुझे जो है स्कूल में और घर में मिला, सोसाइटी से मिला और उसमें से फिर हमने ये एक इंस्ट्रूमेंट चूज किया। सितार एज ए इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से उसमें विलुप्त होके आपको बजाना पड़ता है। तो देखिए, सितार एक ऐसा वाद्य है जिसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसका जो प्लेइंग मटेरियल है इसमें कोई शब्द नहीं होते। जैसे कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप इस पे गाना बजाइए, तो मेरा उनसे ये कहना है कि मैं गाना तो नहीं बजा सकता, मैं गाने की धुन रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो शास्त्रीय संगीत में जो हमारे राग चलते हैं उनमें स्वर है और जो ख्याल और ठुमरी दादरा गाया जाता है उनमें फिर लिरिक्स ऐड होती, तब जाके वो एक कंपोजिशन बनती है। हमारे सितार में लिमिटेशन ये है कि ये हमारे पास शब्द नहीं है, इसलिए हमको पूरा सपोर्ट जो है वो प्योर क्लासिकल का सपोर्ट, रागदारी का जो राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं, उसके जो चलन है उसके आधार पर ही सितार वादन करना होता है। अब फिजिकली बात आई तो फिजिकली ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको रियाज बहुत जरूरी है। तो जब व्यक्ति कंटिन्यूसली रियाज करता है तो इंस्ट्रूमेंट को बजाना इजी हो जाता है। और एक पॉइंट वो आता है कि आपको बजाने के लिए अलग से सोचना नहीं है। जब व्यक्ति बहुत सारा रियाज कर लेता है तो उसके सोचने मात्र से इंस्ट्रूमेंट वैसा बजने लगता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिजिकली ऐसा कोई स्ट्रेनुअस, ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है, बस आपको रियाज, बस आपको रोज करना, ये बात बस ध्यान रखने वाली है। सितार वादन

हमारे लिए बहुत मायने इसलिए लगता है क्योंकि इसके मायने कम उम्र में समझ में नहीं आते। कम उम्र में ये एक शौक रहता है, नॉवेल्टी रहता है, अट्रैक्शन की चीज रहती है, लेकिन जब इसको

इसी के पूजा के ही बराबर है। इन शॉर्ट इन वेरी ब्रीफ अचीवमेंट के तौर पे मैंने भारत के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑलरेडी सब जगह अपना क्लासिकल म्यूजिक का प्रदर्शन किया है, और अपने मुंबई का कुछ जो मंच है वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी है, कोलकाता में ज्ञान मंच करके बहुत रेप्यूटेड मंच है वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी है, जो HRD मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसकी मैंने स्कॉलरशिप प्राप्त की है, इंदिरा कला उससे मैंने 3 बार मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और कई बड़े कलाकारों के साथ मैंने बजाया है, और अभी जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उसके लिए जो भजन बना है तो उसके लिए 5 भजन में मैंने सितार रिकॉर्ड किया है, कुछ प्लेबैक आर्टिस्ट के साथ भी उनके सॉन्ग्स में हमने गाने किए हैं, अब उदित नारायण जी हैं उनके सॉन्ग्स में किए हैं, तो ऐसी लिस्ट तो काफी लंबी है, बट ये है कि लगातार बजाते रहना ही मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए अचीवमेंट होता है, अच्छा बजाना आर्टिस्ट के लिए अचीवमेंट होता है, वो ज्यादा मायने रखता है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी हैं वो किसी भी चीज की जो मूलभूत चीज है उसको पकड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसमें वो ये ना देखें कि ये भारतीय इंस्ट्रूमेंट है कि ईरानियन इंस्ट्रूमेंट है या अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है। आप संगीत के मर्म को समझिए, अगर आपको काव्य पढ़ना है तो आप काव्य पढ़िए, दैट कैन ऑल्सो बी फ्रांस काफ्का, वर्ड्सवर्थ, कालिदास। मेरा ये कहना है कि चीजों की जो मूलभूत सौंदर्य है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और आप सिर्फ अपने लिए ऑनेस्ट रहें। संगीतकार कलाकार जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि संगीत वाले पढ़ते नहीं है, फिलोसफीज नहीं पढ़ते हैं। आपके जो बेसिक फिलोसफीज हैं उसकी रीडिंग करने की हैबिट इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में रीडर्स क्लब बनना चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उससे एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग आइडियोलॉजीज पे ध्यान दीजिए, आइडियोलॉजीज को समझिए, कला को समझिए, और मन में जो भी आता हो उसको एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज एक्सपीरियंस के लिए कोई किताब नहीं है, एक्सपीरियंस को आप सीख नहीं सकते, एक्सपीरियंस के लिए आपको एक्सपीरियंस चीजों को करना पड़ेगा, और जो आदमी जितना एक्सपीरियंस लेगा वो उतने ज्यादा अपने आप को एनरिच करेगा।

0: श्रोताओं आपरों की मुलाकात करवा रहे हैं 35 वर्षीय सागर निवासी आशीष रैकवार से। आपकी रुचि बुंदेली लोकगीतों में है, आप अपने विचार साझा कर रहे हैं अपनी रुचियों के बारे में, गणेश उत्सव के बारे में और स्वच्छता अभियान के संबंध में।
1: हम नन्नी देवरी से हैं, आशीष रैकवार बोल रहे हैं। हमारी 35 साल उम्र है, 10 भी तक पढ़ पाए हैं, खेती किसानी में भी दे रहे थे, प्रेजेंट में केटरिंग का काम करते हैं। बचपन से ही आ गए थे इस लाइन में, शुरू से पढ़ाई लड़ाई 10वीं तक की, 10वीं के बाद पारिवारिक समस्याओं में आ गए, घर की जिम्मेदारी बोझ, दो बहनें हैं उनकी शादी ब्याह करनी पड़ी। हमारे एक ठेकेदार थे, उन्हीं के साथ काम करने जाते थे, उनके साथ जाते जाते सीख गए काम, खाने में सभी चीज अच्छी बना ले थे, नौकरी वोकरी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, बाकी पिताजी के खत्म होने के बाद हम यही लाइन में आ गए थे, तो अबे भी वही काम कर रहे हैं, चलत रही थे, सीजन पे वो चल जाए, बाकी नहीं तो दुकान पे अपने नाश्ता वास्ता खीर पूरी सब्जी के काम चलत रहे थे भंडारे में। गणेश उत्सव चल रहा है तो मैं आदमी अगरबत्ती भी लगा रहे, नारियल भी फोड़ रहे, इतने उतने डाल के भी चले जात, प्रसादी वगैरह ले आत, वो भी पूरे में कचरा फैला के चले जात, पन्निया फेंक जात, बाकी गंदगी नहीं फैलाओ चाहिए सब जनों को, जल के वो चाहते है कि भाई बाकी खावे पीवे की चीजों को भी ध्यान रखे आदमी के, ऊट पटांग खा ले थे और फिर पेट पे रात तबीयत खराब है हो थेगी, स्वच्छता रखते ही नहीं है आदमी, बाकी रखे भैया सब जनों से यही प्रार्थना है, साफ सफाई रखो गणेश प्रतिमा के आजू बाजू पंडाल में और अपने मोहल्ला में शहर में, ये सब जनों से यही प्रार्थना है कि आप पूरे सब खुश रहो, मिल बांट के रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो और स्वच्छता बनाए रखो, अपने वातावरण को अच्छो रखो। गणेश वंदना सुनवा दीजिए, धन्यवाद।
0: और श्रोताओं अब आप औरों को सुनवा रहे हैं लोकगीत कलाकार राजू पटेल और धनीराम सेन की आवाज में गणेश वंदना।

0: सप्ताह चर्चा में
1: 15 सितंबर को देश के राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने अपना 67th फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस मनाया। दूरदर्शन की शुरुआत वर्ष 1959 में आकाशवाणी के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के रूप में हुई थी। बीते दशकों में दूरदर्शन ने सूचना, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में इसकी सैटेलाइट और DTH सेवाओं के माध्यम से देश भर में व्यापक पहुंच है। UPI को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन या P2P लेन देन पर किसी भी राशि के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए भी राहत जारी रहेगी और

0: यूपीआई क्यूआर के माध्यम से हर महीने 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी 0 MDR के दायरे में रहेंगे। 2000 रुपए तक के कई मर्चेंट लेन देन भी शुल्क मुक्त रहेंगे, जबकि चुनिंदा 2000 रुपए से अधिक के बड़े मर्चेंट लेन देन पर नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर सन 2026 से लागू होगा। यूपीआई ऑटो पे से यूटिलिटी बिल, OTT सब्सक्रिप्शन और नियमित निवेश जैसे भुगतान पर निर्धारित MDR नहीं लगेगा और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक कोटा या वॉल्यूम सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। सागर शहर में 17 सितंबर को किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी सागर में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती और कृषि से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महोत्सव का उद्देश्य किसान को नई तकनीकों और कृषि योजनाओं से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाना रहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के सागर केंद्र की साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। इस रेडियो पत्रिका का संकलन और निर्माण था अदिति जैन का।
1: गागर में सागर।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण था अदिति जैन का और संयोजन व प्रस्तुति थी शुभ्रता यादव की। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इसमें आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गजल।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए इस गजल के साथ ही गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर

0: तक पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओबी में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ईआरओ के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है। एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब

0: तो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब डेढ़ दशक से डुसू के

0: चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डुसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सीताराम कुशवाहा से ये गणेश वंदना।

0: Nee,
1: और लीजिए, आप सुनिए राम प्रसाद अहिरवार से ये गणेश वंदना।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं के लिए और आज हमारे साथ हैं वात्सल्य के पढ़े हुए ही एक स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले उनसे उनका नाम जान लें।
4: थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। मेरा नाम है पराग सुरेलिया। मैं बैच 2008 से पास आउट हूँ वात्सल्य से। मैंने कॉमर्स में अपना स्कूलिंग किया था।
3: तो वात्सल्य में पराग कैसे आ गए, इसके पीछे कुछ कहानी है क्या पराग?
4: बिल्कुल मैम, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं वात्सल्य में ज्वाइन किया था मैंने सेकंड क्लास में।
3: अच्छा
4: जी। तो उसकी ये कहानी है कि उसके पहले मैं एक जिस स्कूल में था वो काफी दूर पड़ता था। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम इनको पास में लेकर आते हैं। मुझे नहीं आना था, मुझे वो स्कूल बहुत अच्छा लगता था। पर फिर मेरे पेरेंट्स मुझे एक बार यहाँ के एक बार चलो देखते हैं। जिस दिन मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ का एक बार एनवायरमेंट देखा और यहाँ पे मैं छोटा था, बच्चा था।
3: बिल्कुल,
4: बच्चे को क्या चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड, झूले, कलरफुल चीजें। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, इतना बड़ा खुला स्पेस है और मैंने जो झूले देखे तो मैं जिद पे अड़ गया, मुझे तो यही।
3: अच्छा अच्छा, जो अट्रैक्ट हो गए मतलब।
4: मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ और मैंने बस उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं तो हाँ, मैं यहाँ पे अब पढ़ने लायक, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा।
3: अरे बाबा, चलो ये तो कहानी हुई कि जैसे आपने झूले देखे छोटे, जो मन होता है बाल मन, वो अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब पराग यहाँ आया और फिर पढ़ाई देखी, टीचर्स देखे, फिर कैसा अनुभव रहा आपका?
4: मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अलग स्कूल में है या फिर कुछ ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे मैं बहुत दबके रहूं। यहाँ पे टीचर्स ने इतना इनकरेज किया और बचपन से इतना साथ दिया है कि मुझे, मैं बहुत शाय था बचपन से और बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन मुझे जो ओपन अप करने का जो मौका दिया वो मेरे टीचर्स ने दिया। बचपन से ही उन्होंने इतना ज्यादा इनकरेज किया, इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मुझे अपने बीच में पनपने का मौका दिया। तो उसकी जो बच्चे को एक जरूरत होती है वो उन्होंने दिया
3: जी। अब पराग, हम जानते हैं कि आज बैंकिंग के क्षेत्र और फाइनेंस के क्षेत्र में पराग एक जाना पहचाना नाम है, सभी जानते। तो उस क्षेत्र में काम करते हुए क्या लगता है कि ये वात्सल्य की स्कूल

0: कहीं काम आई?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल काम आई वात्सल का एक बहुत अच्छा ये मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। एक बच्चे को अगर आप सिर्फ पढ़ाने में लगाए रहोगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ लेगा, मार्क्स बहुत अच्छे कर लेगा, लेकिन उसको अगर आप उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, इन फील्ड्स में अगर आप बढ़ाने का मौका दोगे, मौके के साथ साथ उसको एनकरेज करोगे,
0: हाँ,
1: तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनती है
0: ग्रूम हो जाता है
1: ग्रूम हो जाता है,
0: क्या?
1: ओवरऑल जो ग्रूमिंग होती है। तो
0: हाँ,
1: वात्सल्य ने मुझे वो दिया।
0: अच्छा तो बताओ, जब छोटे से थे तो क्या खेलते थे या कुछ गाना वाना गाते थे, क्या करते थे
1: मैम
0: आप?
1: मैं तो बहुत एक्टिव था,
0: हाँ
1: क्योंकि मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था। मुझे फुटबॉल ग्राउंड मुझे फेवरेट था मेरा, यहाँ
0: हाँ
1: का
0: हाँ हाँ
1: मैं फुटबॉल खेलता था। यहाँ पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मैंने बास्केटबॉल एक्चुअली नेशनल भी गया हूँ मैं।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या
1: मैंने उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी,
0: बात
1: उसके पहले मैंने कभी नहीं खेला था, पर
0: है।
1: मुझे
0: हाँ
1: यहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट मिला तो मुझे प्यार हो गया था बास्केटबॉल से। मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया अपने, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कैप्टन था बास्केटबॉल टीम का। मैंने
0: अच्छा,
1: जयपुर में इंटरनेशनल खेला हुआ है। सबकी जो नींव रखी गई वो यहीं से रखी गई,
0: बहुत
1: क्योंकि
0: खूब,
1: मुझे ये मौका मिला कि मैं
0: क्या
1: अपने आप को ग्रूम कर पाऊं उस तरीके से।
0: बात है। तो बहुत अच्छा लगा पराग, इतना टाइम आपने हमें दिया, और हम चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी रहें वहां खूब नाम कमाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।
1: थैंक यू सो मच।
2: वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।

सर्वदा। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आप सभी नन्हे श्रोताओं का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी ऋतु दीदी। तो आप सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, वक्रतुंड महाकाय श्री गणेश बच्चों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाकर हम सभी आगे बढ़ते जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आइए गणपति का गुण

प्यारे बच्चों, श्री गणेश की आराधना हमने बहुत ही धूमधाम से की, क्योंकि गणेशोत्सव का पर्व चल रहा है और हम सबके मन में विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की मूर्ति जो मन में स्थापित है उसे याद करके हम भी बाल धमाल करते रहते हैं, है ना बच्चों? हाँ, लेकिन बाल धमाल में हम हर बार आप बच्चों के लिए नई नई बातें लेकर आते हैं। तो बच्चों, आज हम बाल धमाल में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ बच्चों, विश्व स्वच्छता के बारे में, क्योंकि बच्चों हम विश्व स्वच्छता दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड क्लीनअप डे। विश्व स्वच्छता दिवस बच्चों क्या है? बच्चों, हर साल सितंबर महीने में विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घर, स्कूल, आसपास के वातावरण और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करना है। स्वच्छता केवल सफाई करने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी अच्छी आदतों का प्रतीक भी है। बच्चों, स्वच्छता क्यों जरूरी है? स्वच्छ वातावरण से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। गंदगी और दूषित वातावरण से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमें हमेशा ही स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत भी डालनी चाहिए। हम जानते हैं बच्चों कि बड़ों को ये बात समझनी है और बच्चों में ये आदत डालनी है, लेकिन आप बच्चों को भी ये जानकारी होना ज़रूरी है। पेड़ पौधे और प्रकृति को स्वच्छ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। याद रखिए बच्चों, स्वच्छता की शुरुआत हम स्वयं से कर सकते हैं, है ना? तो स्वच्छता हमारे अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर एक छोटी सी आदत को अपनाने का प्रयास करें। न गंदगी फैलाएंगे और ना ही फैलाने देंगे। अपने घर, स्कूल और देश को स्वच्छ बनाएंगे। बच्चों, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो विश्व स्वच्छता दिवस पर स्वच्छ धरती, स्वच्छ आसमान, सफाई से बढ़े देश की शान और स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े में ये जानकारी आपको बार बार दी जाएगी, लेकिन ये जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। और हम सभी अच्छी आदतों को अपनाएं, सफाई को महत्व दें।

और बच्चों, जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपको एक जानकारी और दे देते हैं। बच्चों, प्रदूषण से निपटने के लिए

0: यह मुख्य रूप से पानी, तालाब, नदी या समुद्र या नम स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों का समूह है। ये पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाता है और इनमें जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। इसे एल्गी ट्री कहा गया है। एल्गी ट्री क्या है? एल्गी ट्री मिट्टी में उगने वाला प्राकृतिक पेड़ नहीं, बल्कि एक आधुनिक आर्टिफिशियल मशीन या बायो रिएक्टर है। यह फ्यूचरिस्टिक पेड़ न सिर्फ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, बल्कि अकेले 25 बड़े पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन भी देता है। तो बच्चों, भोपाल में देश का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है, जो कि 25 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन देता है। यह सोलर एनर्जी से चलता है। इसके कांच के टैंक में मौजूद सूक्ष्म शैवाल फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर भारी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एल्गी ट्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा लगाया गया है। यह एल्गी ट्री माइक्रो एल्गी सिस्टम पर काम करता है। 25 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह हवा में मौजूद खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को एब्जॉर्ब कर उसे ऑक्सीजन में बदलकर वापस वातावरण में छोड़ता है। यह पेड़ों का विकल्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह शहरों में कार्बन कैप्चरिंग और क्लीन एयर सपोर्ट की दिशा में काम करने वाला ग्रीन टेक्नोलॉजी मॉडल है, जो कि बहुत ही आजकल चर्चा में है। तो आपने भी प्रदूषण से निपटने के लिए इस जानकारी को हासिल किया, और बच्चों को नई नई जानकारियां होना तो बहुत ही आवश्यक है। और अब समय है हाँ रेडियो की पाठशाला का।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: बच्चों, रेडियो की पाठशाला में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें बिना बोले भी संवाद करना सिखाता है। हाँ बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हाथों के इशारों से भी एक भाषा के माध्यम से बातचीत की जा सकती है? जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज के बारे में। बच्चों, हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बच्चों, अब बात आती है कि आखिर सांकेतिक भाषा क्या होती है। सांकेतिक भाषा एक पूर्ण भाषा है जिसमें हाथों के संकेत, चेहरों के भाव, शरीर की गतिविधियों का उपयोग होता है। इसके माध्यम से लोग अपने विचार, भावनाएं और बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह भाषा विशेष रूप से मूक बधिर लोगों के लिए संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चों, भारत में भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज ISL का उपयोग किया जाता है। भारतीय सांकेतिक भाषा के अपने नियम, व्याकरण और शब्दावली है। यह केवल हाथ हिलाकर इशारे से बात बताने तक ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध भाषा है जिसे हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। वैसे ही सांकेतिक भाषा से भी संवाद किया जाता है। सांकेतिक भाषा सीखने से हम अलग अलग संवाद करने वाले लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों, आपने भी कभी किसी को हाथों के संकेत से बात करते देखा है? तो आपको भी यह जानकारी होना जरूरी है कि संकेतों की मदद से अपनी बात आसानी से की जा सकती है। बच्चों, विद्यालयों में भी सांकेतिक भाषा के प्रति जानकारी दी जा रही है। सांकेतिक भाषा सीखना एक नया कौशल सीखने जैसा ही है। याद रखिए, हर व्यक्ति को अपनी भाषा में संवाद करने और सम्मान पाने का अधिकार है। तो बच्चों, हम भी सभी भाषाओं और संवाद के तरीकों का सम्मान करें, तभी इस विषय और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सफल होगा। तो रेडियो की पाठशाला में आज बात की सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज।

0: एज की, और अब जानते हैं हम कि बच्चों को इंतजार है नन्हे मेहमानों से मिलने का। तो आइए चलते हैं बाल मंच की ओर।
1: लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: और आज हमारे स्टूडियो में नन्हे कलाकार जो आए हैं, बड़े प्यारे से हैं, छोटे से हैं, और आइए इनसे मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं। बेटा आपका क्या नाम है?
3: कश्यप शुक्ला।
0: कश्यप, आप ये बताइए कि आज हमारे जो नन्हे श्रोता आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या सुनाएंगे?
3: मेरी टीचर सबसे न्यारी, दुनिया में है सबसे प्यारी, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाती, नए खेल सिखाती।
0: बहुत ही अच्छी कविता जो है कश्यप ने सुनाई है। तो आपकी टीचर इतनी प्यारी है, और क्या सिखाती हैं आपकी टीचर?
3: अनार।
0: और ये कविता आपको किसने सिखाई है?
3: मम्मा ने।
0: वाह, अब हम एक और प्यारी प्यारी सी बिटिया से बात करते हैं, और ये बहुत ही क्यूट सी लग रही हैं। बेटा आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम कंचन।
0: कंचन, आप ये बताइए कि आप आज हमारे नन्हे श्रोताओं को क्या सुनाएंगी?
4: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्व सगों में सांस, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोटा खोल लगाती हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आती हैं, मिलते नहीं सहजीले मोटी गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजीले मोटी गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भाग को तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: इतनी प्यारी सी बिटिया, और प्यारे शब्दों में इसने अपनी कविता को सुनाया है, और ये बहुत ही बड़ी और प्रेरणादायक कविता है। बेटा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कविता आपने कहाँ से सीखी है?
4: ये कविता मैंने अपनी मम्मी से सीखी है।
0: माँ जो होती है वो बच्चों की प्रेरणादायी होती है, माँ से प्रेरणा लेकर बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप अपने नन्हे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहती हैं?
4: हाँ बिल्कुल, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई बड़े हो तो उनका आदर सम्मान कीजिए और उनके साथ प्रेम से रहिए। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी बात की है कंचन ने कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, और उनकी बताई हुई सीख को अपने अंदर लेना चाहिए, ताकि हम भी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
5: जाकी हिंदुस्तान की।
0: झांकी हिंदुस्तान की। जी हाँ बच्चों, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जानकारी है बहुत ही जरूरी। हाँ बच्चों, झांकी हिंदुस्तान की में हर बार कोई नया विषय, विशेष जगह, विशेष बातें हम आपके लिए लेकर आते ही हैं, और आज बात करेंगे सांची स्तूप। ये नाम आपके लिए अनसुना नहीं होगा बच्चों। जी हाँ, आपको ये जानकारी होगी भी तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर। हम मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक सांची स्तूप के बारे में जानेंगे। आपने भी इसके बारे में सुना होगा, और शायद कुछ बच्चों ने इस जगह का भ्रमण भी किया हो। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह भारत के प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। बच्चों, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के समय कराया गया था। यह स्तूप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ बने सुंदर तोरण द्वारा

द्वार अपनी कलात्मक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन द्वारों पर बौद्ध धर्म और प्राचीन जीवन से जुड़ी कथाएं दिखाई देती हैं। सांची स्तूप भारत की समृद्ध कला और वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हमें ऐसी ऐतिहासिक स्मारकों की स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अब जब भी आपको घूमने का मौका आए तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को जानने और समझने का अवसर ज़रूर लीजिए। तो बच्चों, सांची स्तूप के बारे में हमने आज आपसे बात की झांकी हिंदुस्तान की में, और हमने जाना मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर सांची स्तूप। तो बच्चों, इतिहास को जानें, धरोहरों को संजोएं और भारत की संस्कृति पर गर्व करें। और अब इंतज़ार है आपको कि आज बाबा के पिटारे में से क्या निकलेगा। तो आइए

0: बच्चों फिर से आ गए आपके बाबा एक प्यारी सी पंचतंत्र की कहानी लेकर। बच्चों कहानी का नाम है झगड़ालू झगड़ालू मेंढक। बहुत पुरानी बात है बच्चों, एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास के दो तीन और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना एक अलग राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने कुछ लोगों से उन्हें पिटवा देता। कुएं के मेंढकों में भीतर भीतर गंगदत्त के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन ना था। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू तू मैं हुई। गंगदत्त ने एक दिन कुएं में आकर बताया,
1: मेरा बहुत अपमान हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं।
2: झगड़ा तुमने ही शुरू किया होगा।
1: तुम खामोखाम मुझ पर शक करने लगती हो।
2: वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उनसे नहीं लड़ेंगे।
0: गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह से तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया,
1: बेटा पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटियों की ऐसी पिटाई करो कि वो पानी मांगने लगे।
2: पिताजी आपने कभी टर्राने की तो इजाजत नहीं दी। टर्राने से तो मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है, जोश आता है। आप ही बताओ हौसले और जोश जब होगा नहीं तो किसी की पिटाई कैसे कर पाएंगे।
0: बच्चों अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वो कुड़ता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग दिखा, फुफकारता हुआ काला नाग।
3: ए मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ। मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है।
1: हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपने लोगों ने बहुत अपमान किया है, मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे हाथ जोड़कर सहायता मांगता हूँ। नाग देवता तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो।
3: मजे? कैसे मजे?
1: मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे।
3: मैं पानी में नहीं जा सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक?
1: नाग भाई यही तो मेरी दोस्ती।

0: काम आएगी तुम्हारे। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा ली हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां रहती हैं वहां एक कक्ष है, तुम वहां रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूं उन्हें अगपक अगपक खाते जाना।
1: मैं तैयार हूँ, इसमें मेरा फायदा ही फायदा है।
0: नाग गंगदत्त के साथ सुरंग के कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में सारे मेंढक आसपास के समाप्त हो गए। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला,
1: भूख लगी है, अब किसे खाऊं? 24 घंटे पेट मेरा भरा रहने की आदत हो गई है, जल्दी बता किसे खाऊं?
0: नाग देवता, अब मेरे कुएं के सभी सियाने और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ खाओ, मजे से खाओ। प्रजा को तो मुझसे हमेशा शिकायत रहती है। अच्छा है, ये नाग देवता पूरे मेंढक को खा जा रहा है।
1: अब किसे खाऊं? जल्दी बोल किसे खाऊं?
0: नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम।
1: मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, इंतजाम कर।
0: गंगदत्त की बोलती बंद हो गई बच्चों। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में चले गए। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा,
1: और खाना कहाँ है? जल्दी अपनी मेंढकी को इधर ला।
0: गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो चलो, बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा।
1: खाना।
0: नाग मित्र, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब तो केवल मैं तुम्हारा मित्र दोस्त।
1: मेरा कोई मित्र नहीं, तू मेरा कौन रिश्तेदार है?
0: बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिख के बताना, और अगले सप्ताह बाबा फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी लेकर। तब तक बाबा ये चला।

अच्छी लगी ना बच्चों कहानी? हाँ, और अब आप सब जानते हैं कि गणेश उत्सव चारों ओर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे बच्चे भी गणेश उत्सव में बहुत ही मन लगाकर बढ़ चढ़कर उसका आनंद उठा रहे हैं। और गणपति बब्बा हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, विनम्रता और अच्छे कर्म जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए गजानन का याद करें।

आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा करें। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर और आप सब पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बच्चों को बाल सभा कार्यक्रम से आपकी ऋतु दीदी अनुमति लेती हैं और आप सभी को बहुत बहुत गणेश उत्सव की शुभकामनाएं और सभी बच्चों को

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें जंगल से।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में जी हाँ मगरमच्छ जी आ गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। मगरमच्छ जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं कुछ।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का मगरमच्छ हूँ। मैं पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन जीवित जीवों में से एक हूँ। इसका कारण है डायनासोर के काल से मेरा अस्तित्व अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। मैं माँ गंगा, माँ नर्मदा और समुद्र के देवता वरुण का वाहन भी हूँ। मेरी मोटी और मजबूत चमड़ी मुझे चोटों से बचाती है। मेरे नुकीले दांत और मजबूत जबड़े शिकार करने में मेरी मदद करते हैं। मेरी लंबी पूंछ तैरने में मदद करती है। अधिकतर समय मैं नदी, तालाब, झील और दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करता हूँ, परंतु कभी कभी नदी किनारे धूप भी सेंकता हूँ। इससे मेरे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। मैं प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण जीव हूँ जो जल तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

0: जी हाँ, तो अब हम जानना ये चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि जल तंत्र को मजबूत बनाते हैं, पानी में आपकी भूमिका क्या है?
1: मेरी पानी में भूमिका बहुत बड़ी है। मैं नदी, तालाबों और झीलों को साफ रखने, उनको संक्रमण मुक्त रखने और सड़ी गली लाशों जो मछलियों या अन्य जानवरों की नदी में बह जाती हैं उनको साफ करने का कार्य भी करता हूँ। इस कारण से मुझे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। मैं एक बहुत बड़ा शिकारी हूँ, लेकिन मैं केवल शिकारी नहीं बल्कि जल तंत्र को संतुलित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। मैं घायल, कमजोर और बीमार और शिकारी और जो भी अन्य सड़े गले जानवर रहते हैं जो नदियों में बह जाते हैं उनको खाने का काम करता हूँ, जिससे नदियाँ स्वच्छ रहती हैं और उनमें बीमारी या संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।

0: अब हम जानना ये चाहते हैं कि आप धूप में ये मुंह खोल कर क्यों बैठे रहते हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, मैं एक ठंडे खून वाला जीव हूँ जो तापमान को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता है। इस कारण से मैं नदी किनारे, तालाबों या झीलों के किनारे बैठकर धूप सेकता हूँ। जिस तरह आपने देखा होगा कि कुत्ते मुंह खोलकर सांस लेते हैं, वो भी इसी तरह से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं भी धूप में मुंह खोलकर अपने शरीर के तापमान को संतुलित रखने और उन्हें गर्म बनाए रखने के लिए मुंह खोलकर बैठता हूँ।

0: अच्छा मगर मच्छ जी, आप खुद इतने विशाल हैं, क्या आपके लिए भी कुछ खतरे हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए मानव द्वारा जो जल प्रदूषण नदियों में फैलाया जाता है, प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है और अन्य प्रकार से रसायनों का बहाव जो नदियों में किया जाता है, उससे मुझे बहुत खतरा होता है। रेत का खनन होता है जो, या बढ़ती हुई मानव आबादी, जलाशयों का सिकुड़ना, ये सभी मेरे अस्तित्व के लिए एक खतरा है। मादा मगरमच्छ जो होती है वो रेतीली जमीनों पर गड्ढे बनाकर अंडे देती है, लेकिन जब रेत का खनन होता है तो इससे मेरी प्रजातियों को संकट में आने का खतरा बना रहता है।
0: जी हाँ, तो अब हम जानना ये चाहते हैं कि अगर मगरमच्छ गायब हो जाए तो क्या होगा?
1: अगर मगरमच्छ पृथ्वी से गायब हो जाते हैं तो जल तंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, पानी में संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। चूंकि मैं सड़ी गली लाशों, मछलियों और अन्य जीव जो बहकर नदी में आ जाते हैं उनको खाने का कार्य करता हूँ, तो इससे क्या है, नदियों में संक्रमण और बीमारियां बढ़ने का खतरा बना रह सकता है। मैं नदियों को साफ करने के लिए एक महत्वपूर्ण जीव की भूमिका निभाता हूँ।

0: हमें मालूम है कि आपको पानी में लेटे रहना बहुत पसंद है और आप जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जाते जाते कुछ संदेश सबके लिए।
1: सभी श्रोताओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने आसपास नदियों, झीलों, तालाबों आदि का विशेष ध्यान रखें, उनकी सफाई का ध्यान रखें, उनमें प्लास्टिक और रासायनिक कचरा ना फैलाएं। जब भी आप मगरमच्छ को देखें तो उससे डरे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए एक मित्र की भूमिका निभाते हैं, वो आपके मित्र हैं। नियमों का पालन करें, नदियों के आसपास जब भी आप जाएं तो मगरमच्छ या किसी से देख कर दूर ना भागें, बल्कि नियमों का पालन करते हुए उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये हम इंसानों के दुश्मन नहीं हैं, हमसे डरे नहीं, हम उनके मित्र हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। आज मगरमच्छ की भूमिका में हमारे साथ रहे
1: मैं कोमल रेकवार, स्टेनु वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।
4: विश्वविद्यालय में खेलों का महत्व सिर्फ प्रतियोगिताओं और पदक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चकते इंडिया फिल्म का गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में आप सुन रहे थे। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजें थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल, सोना महापा

श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज़ों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी शशि डीजे खुशी की, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत, सविता सिंह को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन ख़त्म हो जाए तो बाहर आके ज़रा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी। विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई। विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई, अर्थ।

0: जैसी नजर।
1: अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और काश जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेज ख़त्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज़ मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जो पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब ज़ख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया ज़ख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके लिए मैं इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर ज़िंदा हैं, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेस ऑफ वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कन्फ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूँ। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड्स मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथा वस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3।
1: लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।
2: आज के फनकार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: बॉम्बे टॉकीज।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: भोपाल केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा और कृषि, जनसेवा, धार्मिक उल्लास तथा उपलब्धियों से भरा हुआ एक संदेश लेकर आया। एक तरफ जहां मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों को चिंता और उम्मीद दोनों के बीच खड़ा किया, वहीं पर प्रशासनिक अभियानों और सांस्कृतिक उत्सवों से जिले में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिले के लिए यह महीना कृषि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। जिले में हुई बेहतर बारिश के चलते किसानों द्वारा बोई गई खरीफ फसल की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर शेखर सिंह बघेल के अनुसार इस वर्ष 158,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की गई है, जबकि 140,000 हेक्टेयर में मक्का बोया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 36,000 हेक्टेयर अधिक है। कृषि वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही बारिश को सोयाबीन और मक्का की फसल के लिए नुकसानदायक तथा धान के लिए लाभदायक बताया है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर निखिल सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलों का निरीक्षण कर किसानों को कीट एवं व्याधियों के नियंत्रण के लिए समसामयिक कृषि सलाह दी गई है। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ बीते 7 अगस्त को किया गया, जो 8 जनवरी 2027 तक संचालित होगा। कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना है, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से फील्ड में रहकर जनसंवाद, निरीक्षण एवं समस्याओं का मौके पर निराकरण कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, आयुष्मान कार्ड, समग्र ईकेवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, राशन दुकानों, स्वास्थ्य संस्थानों और स्कूलों की सघन समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही उद्यम संवाद के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी बीच प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा का सिवनी आगमन हुआ। उन्होंने शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम का निरीक्षण कर छात्राओं से संवाद किया और पढ़ाई और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 150 चयनित आपदा मित्रों के लिए जनपद पंचायत सभागृह में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें होमगार्ड टीम के द्वारा आपदा प्रबंधन नियमों और प्राथमिक राहत कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं कुछ दुर्घटनाओं में अगस्त के दूसरे सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 22 लोग घायल हुए हैं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये महीना काफी सक्रिय रहा। सिवनी में गणेशोत्सव पर्व अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की अपील का असर ये रहा कि लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण भी किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा जारी जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत बीते अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से अब तक लगभग 900 आवेदनों पर सुनवाई कर अवैध कब्जे, फसल क्षति मुआवजा, पेयजल, आवास व मजदूरी भुगतान जैसी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ जिले में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के साथ बीते दिनों किया गया। बैनगंगा नदी उद्गम स्थल मुंडारा, परतापुर, शहीद स्मारक टुरिया, छपारा घाट, देवघाट और आदेगांव किला सहित प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल दियों की रोशनी से जगमगा उठे। जिले के विभिन्न अंचलों में भी आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जनभागीदारी से इस अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के साथ ग्रामों, नगरी वार्डों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को भी जोड़ा गया। जिले में स्थानीय स्तर पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और विभिन्न वर्गों को अभियान से जोड़ते हुए सहभागिता सुनिश्चित की गई। सांस्कृतिक और खेल जगत की खबरों की बात करें तो जिले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के कवियों ने भाग लिया। वहीं खेल जगत से सिवनी के लिए गर्व की खबर

0: है कि आईपीएल की गुजरात टाइटंस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अरशद खान का चयन बीसीसीआई द्वारा इंडिया ए टीम में किया गया है, जो आगामी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलेंगे। प्रशासनिक सजगता और जन सहभागिता का ये ताना बाना सिवनी जिले की प्रगतिशील छवि को रेखांकित करता है। सिवनी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज पंडित का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी हम मुलू बोल रहा है सर।
0: मुलू?
1: हाँ रमखिरिया सर।
0: तो रमखिरिया कहाँ पर है आपका ये?
1: सर ये महाराजपुर से 15 किलोमीटर है जंगल पे।
0: अच्छा, रमखिरिया के बारे में और अपने बारे में बताएं कुछ मुलू भाई।
1: हमारे बारे में सर, हम दुकान खोले थोड़ी हल्की सी। तो सर दुकान है, रेडियो रखे हैं, हम रेडियो सुनते हैं, आपकी 2 साल हो गए सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: सभी प्रोग्राम दिन भर सुनते हैं।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है।
1: हाँ, और हमारे तो बहुत अच्छा लगता है जंगल में, हरियाली है, पानी गिर रहा है अच्छे।
0: अच्छा, स्वच्छता का कैसे ध्यान रखते हैं आप अपने गाँव में?
1: जी सर, गाँव तो हमारे सफाई ज्यादा नहीं हो रही सर, कम हो रही है, लेकिन हमारी दुकान के पास हम बहुत सफाई करते हैं सर।
0: तो मुलू भाई, आप एक प्रयास करें कि अपने गांव के लोगों को जागरूक करें स्वच्छता के बारे में।
1: जी सर, जी सर।
0: क्योंकि स्वच्छता अगर हम नहीं रखेंगे तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है।
1: और हम तो सर यही कह रहे हैं, गांव बस्ती वाले सभी गांव से साफ सफाई रखें, अच्छे स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल जरूरी है, स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे।
1: जी सर।
0: तो बताएं गाना कौन सा सुनवाएं मुलू भाई?
1: अग्निपथ का गाना सुना दो, गणेश जी वाला।
0: और हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गणेश वंदना फिल्म अग्निपथ से।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स

0: वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: जी स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
2: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मनीष पटेल।
1: मनीष पटेल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं आप पूछ रहा हूँ, पसीगा।
1: क्या करते हैं मनीष जी आप?
2: सुविधा है, काम से कुछ नहीं करते हैं।
1: अच्छा मनीष भाई, हमें ये बताएं कि स्वच्छता के बारे में आपके गढ़ाकोटा और पिपरिया के लोगों की क्या राय है? स्वच्छता रखते हैं वहाँ पे?
2: जी सर।
1: क्या क्या प्रयास करते हैं?
2: साफ सफाई रखा चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए सड़क में भी, गांव में भी।
1: हाँ हाँ,
2: अपने लोगों से जो है सब।
1: अच्छा, और जो कचरा उठा के आदमी कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ फेंकते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए।
2: जी,
1: ऐसा देखा जाता है कि जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो वहाँ मक्खी मच्छर और कई प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं।
2: जी, उसी से बीमारी होती है।
1: हाँ, उसी से बीमारियाँ होती हैं।
2: जी सर, वो भी।
1: चलिए सुनते हैं मनीष जी आपकी फरमाइश पर फिल्म बॉबी का ये गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: के
2: लिए तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर रखना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: नमस्कार सर, आपको
6: नमस्कार। फोन करेंगे सुने में स्वागत करते हैं आपका।
5: धन्यवाद सर आपको।
6: नाम बताएं अपना।
5: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
6: जी, स्वच्छता अभियान के बारे में आपके गांव के, आपके शहर के लोग क्या सोचते हैं और आपका क्या सोचना है?
5: सर देखिए, स्वच्छता तो जीवन में एक जरूरी अहम हिस्सा जीवन का। तो स्वच्छता तो सभी को रखना चाहिए। हर प्रकार की स्वच्छता होती है और हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सर मेरे यहाँ नगर निगम है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और सारा काम नगर निगम करता है ना, रोड की सफाई है तो सारा काम नगर निगम करता है। और तो यहाँ गंदगी का तो नामो निशान नहीं है, दो तीन टाइम तो झाड़ू लगता है रोडों पर, तो यहाँ गंदगी वाले बात नहीं है।
6: अच्छा, और लोग कचरा फैलाने से बचते हैं क्या?
5: हाँ सर, यहाँ डस्टबिन लगा हुआ, हर जगह जुर्माना लग जाता है।
6: अच्छा अच्छा।
5: हमारे यहाँ अगर कोई कचरा अगर रोड पर फैलाता है तो सीधे नगर निगम जुर्माना लगा देता है।
6: ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने।
5: हाँ
6: तो बाबू भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
5: सर पाकिजा का सुनवा दिए, मौसम है आशिकाना, लता जी ने गाया हुआ है।
6: और आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पाकिजा का ये गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हेलो,
6: स्वागत है आपका, फोन करें गीत सुने में।
5: जी,
6: नाम बताएं अपना।
5: रत्नेश ओझा से, ये घाट हम 3 किलोमीटर।
6: रत्नेश जी, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
5: खेती बाड़ी करते
6: हैं। बहुत ही बढ़िया, और स्वच्छता के लिए क्या ध्यान रखते हैं आप?
5: साफ सफाई के लिए यही है, अब दवाई गिरती मास्क लगाते, साबुन से हाथ हाथ धोते।
6: अच्छा अच्छा, और गांव में कचरा ना फैले, गंदगी ना फैले, इसके लिए क्या काम करते हैं आप?
5: हाँ, इसके लिए अपन दवा डाल लेते हैं तो कचरा नहीं होता, जैसे मच्छर की है।
6: हाँ हाँ हाँ
5: हाँ, तो अपन कर देते।
6: रत्नेश जी, प्रयास करें कि गंदगी फैले ही ना, लोगों में जागरूकता आ जाए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, कचरा जो भी है डस्टबिन में डालना है, और जब भी एक नियत स्थान पर या एक गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, तो आप सब में यही जागरूकता होगी, वो कचरा उठा के उस गाड़ी में डालें।
5: हाँ, ये गांव से बाहर कचरा करते।
6: रत्नेश भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
5: फिल्म का नाम है नदिया के पार।
6: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर नदिया के पार, इस फिल्म का ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो,
4: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगे गीत सुने में। अपना नाम बताएं।
3: गन्नू रजक बोल रहा हूँ सर, बड़ौदा से।
4: गन्नू भाई, क्या करते हैं आप बड़ौदा में?
3: प्रेस करते हैं सर, हटा में।
4: बहुत ही बढ़िया। तो हमें ये बताएं कि स्वच्छता के लिए लोगों को कैसे जागरूक करते हैं और कैसे आप जागरूक रहते हैं?
3: हम तो सर अच्छे माने साफ सफाई से रहते हैं।
4: हाँ हाँ।
3: रहते हैं।
4: हाँ हाँ।
3: कचड़ा अचड़ा नहीं होने देते हैं, और यहाँ जहाँ हम काम प्रेस की दुकान कर रहे हैं यहाँ साफ सफाई करवा देते हैं, सब कुछ झाड़ू लगा के साफ सफाई करते हैं सर।
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि खुद भी स्वच्छता बरतते हैं और साथ में खुद ही काम करने लगते हैं आप।
3: हाँ, खुद करते हैं सर, हम किसी का विश्वास ही नहीं करते।
4: बहुत ही बढ़िया। और लोगों को भी अब जागरूक करना शुरू कर देंगे भाई, कचरा ना फैलाएं।
3: हाँ करते हैं सर, यहाँ जो कचरा फेंकते हैं कोई भी।
4: हाँ हाँ हाँ।
3: तो हम रोक देते हैं कि भाई ऐसा कचरा गाड़ी आओ फिर हॉस्पिटल।
4: हाँ,
3: और यहाँ कचरा भी नहीं होने देते हैं।
4: बहुत ही अच्छा करते हैं। बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
3: शोले फिल्म का। हाँ, कोई भी सुनवा दीजिए।
4: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म शोले का ये गीत।